0: कैसे हाल है आप सबके? हाल तो मजे में ही हो गए क्योंकि वीकेंड जो आ रहा है ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आप सब लोग मजे में है, लेकिन वीकेंड के भी हाल जानना जरूरी है और हाल के साथ जो सड़कों की हाल है वो भी जानते हैं। लोकल खबरों के इस आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आज रविवार के ट्रैफिक की भीषण गर्मी और खराब हवा की वजह से आज संडे को मॉल और शॉपिंग सेंटर्स के आसपास ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है। हालांकि कुछ कनेक्टिंग हाईवे पर चल रहे रोड वर्क और कल रात के जल भराव की वजह से रफ्तार थोड़ी धीमी है, इसलिए अगर आज आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो GPS मैप जरूर चेक कर ले, नहीं तो ऐसा हो ना जाए कि आप फैमिली को बड़े एनर्जी के साथ कहीं पे घुमाने लेके जा रहे हो और रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हो या रोड पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपका जो प्लान है वो इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है। सो डू टेक केयर दैट एंड सुनते हैं अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: अपना।
1: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट। 7 से 10 हमारा ये शो चलता है एंड अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की कुछ खबरें जान लेने का। द इंडिया स्टोरी के ट्रेलर ने 24 घंटे में तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब रुक करते हैं बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ, जहां काजल अग्रवाल का द इंडिया स्टोरी का ट्रेलर सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है। आज 19 जुलाई को मेकर्स ने खुलासा किया कि इस सस्पेंस से भरपूर ट्रेलर ने पिछले 24 घंटे में यूट्यूब पर रिकॉर्ड तोड़ दिए है। आज बी टाउन में हर तरफ इसी फिल्म की चर्चा है एंड ट्रेलर ट्रस्ट मी इतना बेहतर है कि ट्रेलर ही इतना बेहतर है तो फिल्म कैसी हो सकती है, इसका अंदाजा आप सब ऑडियंस लगा सकती है। एंड ये जो टॉपिक आते हैं ना, बहुत रेयरली आते हैं, एंड उसके बाद इतना अच्छा कंटेंट बनाकर इतना अच्छा ऑडियंस को एंगेज रखना, इट्स अ बिग टास्क। चलिए एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पटेल बना नाइट्स एंड दिल्ली के जंतर मंतर पर सुनम वांगचुक के अनशन का आज 22वां दिन। हालक नाजुक लद्दाख के अधिकारी और पर्यावरण के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन का आज रविवार को 22 डे चल रहा है। डॉक्टरों की टीम ने आज सुबह बुलेटिन जारी कर बताया कि वांगचुक के शरीर में पानी की भारी कमी हो गई है और उनकी हालत काफी चिंताजनक है। आज संडे की बॉलीवुड को नई और नामी हस्तियां और सामाजिक कार्यकर्ता उनके समर्थन में दिल्ली पहुंच रहे हैं और सरकार से तुरंत बातचीत की अपील भी कर रहे हैं। और एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि सोनम जी को उठाया गया है पुलिस द्वारा एंड क्योंकि उनकी स्थिति जो थी वो गंभीर थी। इसमें तरह तरह के ओपिनियन लोगों के हमें देखने मिल रहे हैं लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे सही है। वेल एंजॉय करते हैं अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

0: टू रेडियो नायरा, आप सुन रहे हैं निर्वाणा नाइट्स एंड गो रैली। बसों का बड़ा दायरा, यात्रियों की रिकॉर्ड भीड़। रैली शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आज एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। शहर की सबसे बड़ी व्यस्त बस रूट्स पर नई 60 फीट की लंबी बसें चलने के बाद यात्रियों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है। सोमवार की सुबह ऑफिस जाने वाले लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर गो रैली की बसों में सफर करना पसंद कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है और जो जर्नी है वो भी आरामदायी हो रही है। मतलब लोग सोच रहे हैं, क्या यार, अपना व्हीकल निकालो, ड्राइव करो, उससे अच्छा तो हम क्यों ना बस में ही चढ़ जाए और बस में आराम से बैठ के ऑफिस चले जाए, ताकि एनर्जी भी बरकरार रहे, कंफर्ट भी रहे और कोई टेंशन नहीं, और प्रदूषण वो तो यार कम हो ही रहा है। ये बहुत अच्छा है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बात बताना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी बात है एंड गुड न्यूज आप सभी के लिए कि फॉल्स लेक में पानी का स्तर जो है वो सुधरा। हमारे ट्रायंगल एरिया के पानी की सप्लाई को लेकर एक राहत भरी खबर है। पिछले दिनों हुई जबरदस्त बारिश की वजह से फॉल्स लेक का वाटर लेवल 65% के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से आने वाले हफ्तों में पानी की जो तकलीफ है वो कम हो सकती है एंड पानी का लेवल जो है वो अप हो चुका है। रूल 2 भी लागू कर दिया था, पानी यूज करने में कड़े निर्बंध जो है वो लगाए गए थे एंड जरूरी भी थे, लेकिन अब पानी की लेवल जो बढ़ रही है तो थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइक केयरलेस होकर पानी का यूज करना है। पानी का यूज एंड नेचर की केयर तो हमेशा करनी ही है, बहुत जरूरी है। और लाइक यू नो ये करोगे तो यार बेटर रहेगा, ताकि अगली बार ऐसी प्रॉब्लम में आप ना फंसे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का दिसी।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: एंड मैं ये कह रहा था कि यार उमस जो है ये तो इस कदर कहर मचा रही है कि आप सबको हाइड्रेटेड तो रहना ही है, और दोपहर के वक्त भी जो निकलते हो बाहर तो डार्क कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मैंने देखा यार बहुत सारे लोग गर्मी में भी ब्लैक कपड़े पहनते हैं, तो थोड़ा लाइट कलर के कपड़े एंड आप अगर पहनते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो और भी गर्मी का शिकार आप हो सकते हो। तो वही है यार बस, एंड उसके बाद गाड़ी जो है वो आराम से चलाए, एक सेफ डिस्टेंस आपको रखना है सामने वाले गाड़ी के साथ, स्पीड पर नियंत्रण करना है, सेफ डिस्टेंस उन लोगों के साथ भी रखना है जो टॉक्सिक है एंड आपके लाइफ में टॉक्सिक बनते जा रहे हैं, एंड बाकी तो यार सब कुछ अच्छा ही है। एंजॉय कीजिए संडे की ये शाम एंड सुनते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेल फोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,
1: इडियट
2: चेक,

0: सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरमाना नाइट्स एंड कैसे चल रही है आपकी ये संडे की शाम। मैं यही कह रहा था कि यार मौनी रॉय ने जो स्टेटमेंट पिछली बार दिया था कि थोड़ी प्राइवेसी रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर अगर कैमरा आपके पीछे रहता है तो आपको इरिटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड हमेशा पब्लिक प्लेस में तो भी यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसा मौनी का कहना है। और एक तरह से सही भी लगता है, क्योंकि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अलग अलग आप अगर रखते हो तो वही बेटर रहता है। लेकिन क्या होता है, एक टाइम के बाद ना ये चीज़ों का इरिटेशन होने लगता है कि आप हर जगह पे जाओ और हर जगह पे कैमरा आपके पीछे है। सो यार मुझे भी लगता है कि हर किसी के प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सनल लाइफ भी अपने आप की होती है, सबकी होती है, एंड उसका ख्याल अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपके साथ सोचोगे, है ना, सोचने जैसी बात है। सुनते अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नारायण निर्मला नाइट्स एंड एंजॉय किया आप सभी ने ये गाना। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे सारे लिसनर को कि रेडियो नारायण निर्मला नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ नहीं करना है आपको, जाना है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर पे, टाइप करना है रेडियो नायरा एंड डाउनलोड कर लेना है हमारा रेडियो नायरा का ये ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर मात्रा में शोज एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। बस शर्त यह है कि आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा रहना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में आप हमारे रेडियो नायरा के शोज को एंड म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट आपका प्यार इस तरह से ही बरकरार रखिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा इस प्यार भरी शाम का ये अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मदा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे मौसम जो है वो सुहाना हो रहा है। एंड यू नो, ये प्यार भरी शाम में अगर आप अपने किसी खास के साथ है तो बात ही कुछ और है। इस वादियों में जो मज़ा है, जो इश्क चल रहा है, वो तो काफ़ी अलग लेवल का है ऐसा मुझे लग रहा है। एंड धीरे धीरे यार क्या ही मतलब बताऊं मैं आपको, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। वेल, इस संडे की शाम को किचन को तो छुट्टियां होती है एंड बाहर जाने का प्रोग्राम होता है। अगर आप डेट पर हो किसी के साथ तो मतलब एक प्यारी सी स्माइल आपका दिन बना देगी, कल मंडे का है ना। तो यार बस वही सुनते हैं अगला गाना एंड एंजॉय करते हैं इस प्यार भरे मौसम को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM।

0: देखते ही देखते यार ये संडे की ब्यूटीफुल शाम भी ढल रही है एंड संडे भी खत्म हो रहा है, कल मंडे एंड कल मतलब ऑफिस जाना है, अपने बिजनेस पर जाना है, लाइनअप्स हो गए बहुत सारे, लेकिन क्या करें यार, अगर काम करेंगे तो ही वीकेंड का एंजॉय, वीकेंड का लुफ्त हम उठा पाएंगे। सही बात है ना, काम करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक रह के काम स्टार्ट करना है, फिर तो संडे आने वाला ही है यार। लेकिन मंडे जो है, मंडे को भी एनर्जेटिक रखना है एंड मंडे को भी चिल करते करते काम करना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अपने काम को ऑनेस्टली करो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। 7 से 10 का अगेन ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आप सभी को रेडियो नायरा पर एंड निर्मला नाइट्स हमारा शो है, 7 से 10 ये हमारा शो चलता है। एंजॉय कीजिएगा, अपने आप का अपनों का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek.

0: सलाम नमस्ते गीत बाजार
1: डांस
2: अफरोज ताज आपसे मुखातिब है।

0: आ जा के आज आएगा मौसम पे फिर शबाब। अरे आ जा के आज आएगा मौसम पे फिर शबाब, आने से बज उठेंगे तेरे चंग और रुबाब। खातिनो हजरात, गीत बाजार की जानिब से आपको बुलाते हैं हम। आप आए हैं तो महफिल में जान आ गई है, बल्कि बाहर आ गई है। हर तरफ हम और हमारे गीत जो आपने फरमाइश के जरिए भेजे हैं। मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी हिम्मत अफजाई की बात है कि आप हमारे रेडियो प्रोग्राम में इतने अच्छे अच्छे नगमे फरमाइश की शक्ल में देते हैं। हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली फरमाइश आप जानते ही हैं, समृद्धि ठाकुर साहिबा की है, शायद ना आप जानते हो, लेकिन क्या बात है उनकी फरमाइश की। उसके बाद दूसरी फरमाइश आप जानते ही हैं, ज्योति करीर साहिबा की मॉरिसविल से। वी आर योर होस्ट अफरोस्ता जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज रेडियो नायरा की पेशकश गीत बाजार।
1: यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार ऑन रेडियो नायरा 101.9 FM विद न्यू डबल ब्रॉडकास्टिंग पावर, आल्सो 99.9 HD4 एंड 1490 AM राली डरम।
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: پیش خدمت ہے جوتی کریر کی فرمائش، یہ حسن مجسم ہے چہرہ یہ تمہارا، یہ حسن مجسم ہے چہرہ یہ تمہارا، اور غضب ہو گیا ہم پہ دوہرا تمہارا۔ یو آر لسننگ ٹو گیت بازار۔

0: धीरे धीरे हर तकल्लुफ आपका जाता रहा। बड़ी पुरानी गजल मुझे याद आ गई अपनी। अरे धीरे धीरे हर तकल्लुफ आपका जाता रहा, अब हमारे दरमियां से शुक्रिया जाता रहा। तस्लीम फाजली का कलाम मौसीकी नाशाद की, नौशाद की नहीं, ये पाकिस्तान में नाशाद हैं एक साहब उनकी। फिल्म का नाम जीनत, पाकिस्तानी फिल्म 1975 में बनी, जिसका ये नगमा था। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो, मेहदी हसन की आवाज़ और सुनीता टेक चंदानी की फरमाइश पर कराची से। और अब एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से चरणजीत लाल जी एंड कंचन लाल जी की बेहतरीन फरमाइश लता मंगेशकर की आवाज में। और मैं कहता हूं, नाम रंगीला रखा है क्यों ये मेरे श्याम का, अरे नाम रंगीला रखा है क्यों ये मेरे श्याम का, दिल जो देखा तो ये पाया रंग से भरपूर था।
1: रंग

0: में फंस गई मेरी तमन्ना खाक निकलेगी। अरे चमक में फंस गई मेरी तमन्ना खाक निकलेगी, अगर निकली भी तो निकलेगी जब मैं खाक में होऊंगा। हाथीनो हजरात, फिल्म का नाम हीरा पन्ना। मजेदार फिल्म है, 1973 की ये फिल्म थी। अगर मौका लगे तो देख लें। आर डी बर्मन की मौसीकी और किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी की जानिब से ये फरमाइश। और अब हुजूरे वाला मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा ने जो इम्तिहान भेजा है, जो परीक्षा भेजी है, जिस नगमे की फरमाइश आप कर रही हैं पूर्णिमा गुप्ता साहिबा, तो क्यों ना आप अपनी आवाज से हमें नवाजें।
1: तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार का रिश्ता।
0: क्या मजे की बात है, वाह! इसमें तो आपने कुछ कहा ही नहीं है। तेरा मेरा मेरा तेरा, अच्छा तो लीजिए हुजूरे वाला, पहले तो सुन लीजिए शेर। इकरारे मोहब्बत में शर्मा रहे हो तुम, अरे इकरारे मोहब्बत में शर्मा रहे हो तुम, हाँ कह के नकली नाको झुटला रहे हो तुम।

मौसम की रंगीनी हमको प्यार सिखा के चली गई। समाज फरमाइए, ये शेर बड़ी मेहनत से लिखा है मैंने कि मौसम की रंगीनी हमको प्यार सिखा के चली गई और इसके आगे अनहोनी को होनी आज करेगा कौन। गुलशन बावरा का कलाम, रवि की मौसीकी, माय फेवरेट मौसीकार। फिल्म का नाम मॉडर्न गर्ल, माय फेवरेट नाम। 1961 की ये फिल्म है, मुकेश और साथ में हैं सुमन कल्याणपुर। शायद उन्हीं की याद में ये नगमा मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा ने भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर इम्तिहान सराखों पर। और अब बारी है गर्मियों की। देखिए गर्मियां तो हर जगह हैं इस वक्त, यहाँ भी गर्मी वहाँ भी गर्मी, यानी हिंदुस्तान में भी हम सुन रहे हैं अच्छी खासी गर्मी है और बनारस में भी गर्मी है। मोहतरम जनाब दामोदर पांडे ये नगमा भेज रहे हैं, वाह गर्मी की याद में, गर्मी की तारीफ में। आशा भोसले की आवाज़। छत पर आना पाए बैठी धूप से बचकर वो घर में, अरे छत पर आना पाए बैठी धूप से बचकर वो घर में, और गर्मी की भरपूर जवानी आग लगाए बिस्तर में।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: Geek Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, Lahoya to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Sharpeville, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Jarzak to Sharjah, Florida to Murodabad.
3: ना घबरा तू अगर तेरा कहीं पर नाम आया है, समातरमाएं कि ना घबरा तू अगर तेरा कहीं पर नाम आया है, ये दुनिया है यहां सीता पे भी इल्जाम आया है। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश एंड वी आर योर होस्ट अफरोज ताज जान कॉर्वेल एंड रवि चिरुकड़ी। और साथ साथ मैं कहूंगा कि आप जानते हैं 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
4: यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार ऑन रेडियो नायरा 101.9 एफएम विद न्यू डबल ब्रॉडकास्टिंग पावर आल्सो 99.9 एचडी4 एंड 1490 एएम राली डरहम। And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
3: Aapki har farmaish sar aankhon par. Jaise ye farmaish hai mohtaram janab असित कुमार साहब की जानिब से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश का, शहर का नाम आपने नहीं लिखा। तो समात फरमाई लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा खास कर, दिल में हमारे क्या है कैसे दिखाएं हम, अरे दिल में हमारे क्या है कैसे दिखाएं हम, शीशे का दिल नहीं है दुकान से जो लाएं हम। यू आर लिसनिंग टू Geek

दिल है नाजुक नाजुक मेरा, फूंक से ये गिर जाएगा। समझ फरमाइए कि दिल है नाजुक नाजुक मेरा, फूंक से ये गिर जाएगा, और दिल का दिल आ जाए जो दिल पर, कैसे वो फिर जाएगा। अगर

दिल का शीश महल है प्यारे, जिसमें दिल का चोर। अरे दिल का शीश महल है प्यारे, जिसमें दिल का चोर। चोर भी ऐसा छोड़ के भागे, हुआ जरा भी शोर।

अली करके बोतल फेंकी और कहा, देखिए जरा आप कितना हमारा दिल बड़ा है कि खाली करके बोतल फेंकी और कहा, ये ले अपना हिस्सा भी कुर्बान किया।

जो भी अब नुकसान हुआ है मैं तो नहीं गिनाने का। समझनाएं कि जो भी अब नुकसान हुआ है मैं तो नहीं गिनाने का, और दीवानों ने हाल किया क्या, देखो इसमें खाने का।

कर एक नजर इधर तू तो शोर उठे हर सू। समात फरमाइएगा, कर एक नजर इधर तू तो शोर उठे हर सू, टकरा गया मस्ती में पैमाने से पैमाना।

शीशे में दो तस्वीरें, एक तेरी एक मेरी भी। अरे शीशे में दो तस्वीरें, एक तेरी भी एक मेरी भी। और जब गौर से मैंने देखा तो तेरे ही दो दो रूप दिखे।

शीशे से गुलाबी रंग तेरा अब आंखों में दिख जाता है। अरे शीशे से गुलाबी रंग तेरा अब आंखों में दिख जाता है। जब जाम जरा ढल जाएगा तो नींद तुझे आ जाएगी।

उछालो ना इतना ये तुम दिल को अपने, उछालो ना इतना ये तुम दिल को अपने, जो छूटा तो समझो गए सारे सपने।

बोतल शराब की क्यों पत्थर से तोड़ डाली, बोतल शराब की क्यों पत्थर से तोड़ डाली, लगती जरा सी ठेस तो वो चूर चूर होती।

चलो संभल के नाजुक बोतल ठेस कहां सह पाएगी। समाज फरमाइए कि चलो संभल के नाजुक बोतल ठेस कहां सह पाएगी। चलते चलते मुड़के देखा, अरे बोतल एक समंदर थी। खातिन हजरात चलते चलते हम भी कहते जाएं कि 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए। वाह, ऐसा ही होता है कि जब अच्छा वक्त गुजरता है तो बहुत जल्दी, और जब मुश्किल वक्त होता है तो बड़ा लंबा टाइम लगाता है। और मैं कहता हूँ, वी आर योर होस्ट अफरोज़ जान कॉलवेल एंड रवि चिरीकुड़ी। 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम हर इतवार को आपकी खिदमत में आपकी फरमाइशों के साथ मौजूद होते हैं और कहते नजर आते हैं कि आपकी हर फरमाइश सन आंखों पर। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। तो चलते चलते देव गोस्वामी की आवाज सुनते जाएं। अब देव गोस्वामी की आवाज कैसी है तो आपको पता लग ही जाएगी। मैं कहूंगा कि पैदा किया खुदाया पत्थर के जमाने में। अरे पैदा किया खुदाया पत्थर के जमाने में, और शीशे का दिल बनाया पत्थर के जमाने में। मोहब्बत जिंदाबाद, ओम शांति।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: मैं डब्लू हुईगुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
1: Ooh, bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Ooh, bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Ooh, bhai phu, phugadi phu, you like me.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: क्यों थक रहे हो?
1: छीन लूं मैं तेरा पैसा पैसा पैसा, चैन आए लेके पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरा
2: पैसा ही पैसा।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर, लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर, बारी तेरी हार देना चंचला फर, माने तुझे पड़ा कि ये क्या खिलाकर।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3888.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
0: 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 414-90 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
2: Hello, future wife.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Ali Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

पीपल, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है नायरा राली ड्रम पे। आपने ट्यून इन किया है 99.9 FM HD4, 101.9 FM 4090 AM। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयुषी, आपके साथ आपके लिए लेकर आई हूँ जरा मुस्कुराओ। इट इज अ न्यू डॉन, अ न्यू डे, अ न्यू वीक, एंड यस वंस अगेन अ न्यू डे इन होप्स कि शायद कुछ बदलेगा, शायद दुनिया में सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, होपफुली। एनीवे, हियर वी आर स्टार्टिंग अ न्यू वीक। मंडे की शुरुआत कर रहे हैं, बढ़िया एनर्जी के साथ करेंगे, लॉट ऑफ मोटिवेशन के साथ करेंगे। आपके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल मंडे मोटिवेशन लेकर भी हम आए हैं आज। तो आज हम थोड़े समय के लिए बात करेंगे एंड देन आपको जो मच नीडेड मोटिवेशन है वो भी मिल जाएगा। बाकी ओवर द वीकेंड क्या क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द ट्राइंगल। पिछले हफ्ते हम मिल ही नहीं पाए, हमारी बात ही नहीं हो पाई, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कैच अप ऑन। सो यस, हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड आई एम गोइंग टू बी कीपिंग यू अपडेटेड एज यूजुअल। आज मंडे है, आज जो भी होगा, कल जो भी होने वाला है उसके बारे में हम आराम से प्रॉपरली बात करेंगे। एवरी थिंग दैट इज गोइंग ऑन लिटरली, मतलब वेदर से लेके सब कुछ। अब वेदर के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे जो फ्लैश फ्लडिंग है उसके केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एग्जैक्टली वेदर कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी देर में आराम से बात करेंगे। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कैच अप ऑन, इसलिए आप भी कहीं में जाइए, मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ। सुनते रहिए नायरा राली ड्रम, मैं हूँ आयुष के साथ।

नमस्ते एंड वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. जो ओवरऑल बारिश चल रही है उसके चलते हमारे यहाँ पे यस फ्लैश फ्लडिंग के जो भी इंसिडेंसेस है वो बढ़ रहे हैं. एंड आज भी स्टॉर्म्स आर गोना बी डेवलपिंग आफ्टरनून और 1 PM. सो अभी तो एज सच कुछ ज्यादा बारिश नहीं लगेगी आपको, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएगा द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉब्लम इज गोना बी लोकलाइज्ड डैमेज एंड फ्लड पोटेंशियल टू द एरिया. सो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है. सो स्टॉर्म्स आर गोना बी न्यूमरस इन द आफ्टरनून एंड इवनिंग. हाइस की बात करें तो दे आर गोना बी इन द अपर 80s. एंड ये कोल्ड फ्रंट जो है इट इज़ गोना बी स्टॉलिंग ओवर द एरिया आज के दिन, जिसके चलते आज से फिर से एक बार वी आर गोना बी गेटिंग एक अच्छा खासा चांस ऑफ स्टॉर्म्स बाय द आफ्टरनून एंड देन इनटू द इवनिंग. एंड कल परसों की अगर बात करें तो यस ये स्टॉर्म्स तो रहेंगे ही रहेंगे. कुछ कुछ में बिकम सीवियर, कुछ कुछ हिट एंड मिस भी हो सकते हैं. हाइस की अगर बात करें तो दे गोना बी अराउंड अपर 80s टू मिड 90s. दिस इज हाउ द वेदर इज लुकिंग लाइक एट लीस्ट फॉर लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक. एंड यस लोकल फ्लडिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, सो हमें उसका ध्यान देना है. एंड ऐसे में अगर आपको रास्तों पे पानी नजर आ रहा है तो प्लीज अवॉइड दैट रूट टोटली कंप्लीटली एंड एक डिटोर लेके जाइए. बट प्लीज खुद का ख्याल रखिए. ऐसा नहीं कि पानी दिख रहा है अरे गाड़ी निकल जाएगी, ऐसा नहीं करना है. प्लीज ड्राइव सेफली रिस्पॉन्सिबली एंड दिस इज ऑल द वेदर इज लुकिंग लाइक. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
0: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा।
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur-chur naan made with love and fresh ingredients.
0: Planning your birthday, wedding,

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषी एंड आप मेरे साथ फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं जरा मुस्कुराओ। दिस इज वन थिंग दैट वी आर नॉट गोना बी एंजॉयिंग कि हमारे गैस प्राइसेस हैव जंप टू एन एवरेज ऑफ $4 अ गैलन अगेन आज सुबह उठते ही, एंड इट इज बिकॉज यूएस एंड ईरान लॉन्च्ड मोर अटैक्स। सो अकॉर्डिंग टू मोटर क्लब फेडरेशन AAA, द नेशनल एवरेज फॉर अ गैलन ऑफ रेगुलर गैसोलीन इज नाउ बैक टू $4 एंड द एवरेज प्राइस अ ईयर अगो वॉज $3.14 अ गैलन। सो अब ये जो प्राइस है वो नेशनल एवरेज है। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ स्टेट्स में आप देख सकते हैं दैट पीपल हैव ऑलरेडी बीन पेइंग वेल ओवर $4 अ गैलन फॉर अ वाइल नाउ, एंड कुछ कुछ जगहों पे कुछ लाइक $4 से कम है, बट ओवरऑल दिस इज द एवरेज प्राइस। नाउ प्राइसेस वैरी बिटवीन स्टेट्स बिकॉज ऑफ फैक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम नियर बाय सप्लाई या फिर डिफरिंग टैक्स रेट्स एंड या फिलहाल अगर हम देखें तो गैस तो बढ़ गया है, मतलब दे हैव वेंट ओवर $4 गैलन ऑन एवरेज एट द एंड ऑफ मार्च एंड उसके बाद आज फिर से वो चला गया है। सो अफोर्डेबिलिटी इज ऑब्वियसली द की इशू फॉर वोटर्स इन द US मिड टर्म इलेक्शंस, एंड ये जो हायर गैस एंड ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं दे कैन हेल्प पुश अप प्राइसेस फॉर ग्रोसरीज एंड अदर गुड्स एज वेल। सो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे आते हैं एंड अब देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं। बट ब्रेंट क्रूड विच इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रोज 3.2% टू $90.95 पर बैरल एंड बेंचमार्क US क्रूड क्लाइम्ड लिटरली 2.8% टू $84.04 पर बैरल। सो दिस इज हाउ द गैस प्राइसेस आर लुकिंग लाइक। स्टे ट्यून्ड।

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो साइक्लोस्पोराइसिस के केसेस जो है वो हमारे यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं. मोर देन 30 पीपल गॉट अ साइक्लोस्पोराइसिस डायग्नोसिस ऑन थर्सडे, यानी कि पिछले हफ्ते इन वीक काउंटी. एंड जो अब हमारे यहाँ का टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हो गया है, इट इज़ अराउंड 270. इट इज़ एक डायरिया कॉजिंग बग, जिसके चलते येस लोगों को बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं. एंड अगर आपको ऐसे थोड़े से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो प्लीज़ डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाइए. सो काउंटी हेल्थ डिपार्टमेंट इज एज ऑफ नाउ अवेयर ऑफ 5 पीपल इन वीक काउंटी हु आर हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर एन एनकाउंटर विद साइक्लोस्पोरा, विच इज़ एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट, जिसके चलते आपको बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हो सकते हैं. एंड इट स्प्रेड्स व्हेन समवन ईट्स और ड्रिंक्स समथिंग कंटामिनेटेड विद फीसेस. सो फिलहाल एक लेटस जो है उसको माना जा रहा है कि दैट लेटस माइट बी द रीजन ऑफ दिस आउटब्रेक. बहुत सारे स्टेट्स में उसको रिकॉल किया गया है. देर आर डिटेल्स अबाउट दैट एज वेल. बट अक्रॉस द स्टेट मोर देन 300 केसेस ऑफ साइक्लोस्पोराइसिस हैव बीन रिपोर्टेड इन रीसेंट वीक्स, विद द बल्क ऑफ दोज कमिंग इन वे काउंटी इटसेल्फ. स्टेट ने यह भी कहा है दैट 14 पीपल हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ द स्टमक बग थ्रू आउट द स्टेट. सो अभी 1500 केसेस ट्रैक किए जा रहे हैं अक्रॉस 5 स्टेट्स एंड दे आर linked to this letters जो कुछ particular outlets में ही मिलता है. अब हमारी state की अगर बात करें तो हमारा state has yet to determine the source of the illness, but yes, it is very important कि अगर आपको थोड़ी सी भी symptoms नज़र आते हैं तो directly go to the doctor. And ये हमें obviously जो इसका outbreak है वो थोड़ा सा मतलब कम करना है, तो बाहर का खाना आप कहाँ से खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसके तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए. सुनते रहिए नायरा राली ड्रम.

वेलकम बैक, आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का डीसी पक्का लोकल, मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं सरा मुस्कुराओ। हमारे यहाँ के शॉपर्स आर टर्निंग टू लोकली ग्रोन प्रोड्यूस सोल्ड एट द स्टेट्स फार्मर्स मार्केट बिकॉज हेल्थ ऑफिशियल्स जो है वो लोगों को थोड़ा सा इतला कर रहे हैं कि साइक्लोस प्राइसिस का आउटब्रेक अभी तक चल रहा है एंड दे आर येट टू फाइंड अ सोर्स। सो जो संडे को फार्मर्स मार्केट होता है वहाँ पे एक्चुअली लोगों की ज़रा ज़्यादा भीड़ नज़र आई है ओवरऑल, बिकॉज पीपल वर लाइक कि वी आर नाउ गेटिंग नर्वस कि हमें नहीं पता ये आउटब्रेक कहाँ से हो रहा है कैसे हो रहा है, तो हम जहाँ से भी प्रोड्यूस खरीद रहे हैं हमें ऑब्वियसली ध्यान देना है कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं। सो दे आर बेसिकली मेकिंग श्योर कि हम फ्रेश प्रोड्यूस खरीदें। एज अ फ्राइडे हमें पता चला है कि बहुत सारे जो ग्रोसरी स्टोर्स है दे आर रिमूविंग ऑल आइसबर्ग लेटस फ्रॉम द US मार्केट। बहुत सारे आउटलेट्स ने डिसाइड किया है कि दे आर रिकॉलिंग दैट एंड US CDC ने कहा है दैट द श्रेडेड लेटस विच वॉज सेंट टू टाको बेल लोकेशंस इन इंडियाना केंटकी मिशिगन ओहायो एंड वेस्ट वर्जीनिया वॉज बेसिकली द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटब्रेक। एंड जो थर्सडे नाइट को उन्होंने नोटिस पोस्ट की है उसमें द एजेंसी वॉर्न द पब्लिक नॉट टू ईट श्रेडेड आइसबर्ग लेटस सर्वड एट टाको बेल लोकेशंस इन दोज स्टेट्स। So ऐसे में yes, people are going to farmers market and they are just making sure कि भैया हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा produce खरीद रहे हैं। So yes, this is just एक reminder again कि आप जहाँ से भी सब्जियाँ खरीद रहे हैं वो proper है या नहीं, वो कहाँ से आई है ये थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद ही खरीदिए ताकि आप safe रहेंगे। सुनते रहिए नायरा राली ड्रम, मैं हूँ आयुषी आपके साथ।

हेलो हेलो वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड मेरे साथ आप फिलहाल सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो नियरली 300,000 कॉलेज गोअर्स इन आवर स्टेट हैव डिफॉल्टेड ऑन देयर फेडरल स्टूडेंट लोन्स कलेक्टिवली ओइंग $7.8 billion. ऐसा हमें एक डेटा के मुताबिक पता चला है. नाउ दिस डेटा वाज एनालाइज्ड बाय द एसोसिएटेड प्रेस एंड अबाउट हाफ ऑफ दोज पीपल ओइंग एन एवरेज ऑफ $26,500 हैव गॉन इनटू डिफॉल्ट जस्ट सिंस लास्ट सितंबर. उसके पहले तक ऐसा नहीं था. नाउ अक्रॉस द कंट्री द नंबर ऑफ बोरोअर्स विद डिफॉल्टेड स्टूडेंट लोन्स जम्प्ड बाय मोर देन 4.2 million फ्रॉम अप्रैल 2025 टू मार्च 2026 एंड दिस सर्च इंक्लूड्स मेनी हु वेंट ऑफ ट्रैक इन 2024 जब हमने देखा कि लोन पेमेंट्स जो है दे स्टार्टेड कमिंग ड्यू अगेन आफ्टर देयर वाज एक पैंडेमिक एरा का फ्रीज. अब नेशनली एंड हमारी स्टेट की बात करें तो अबाउट 1 in every 5 बोरोअर्स इज इन डिफॉल्ट एंड अबाउट द सेम नंबर वॉज नॉट एक्टिवली रीपेइंग देयर लोन्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2026. ऐसा भी हमें लेटेस्ट डेटा के मुताबिक पता चला है. सो हमारे यहाँ पे फॉर प्रॉफिट करियर कॉलेजेस एंड स्मॉलर प्राइवेट कॉलेजेस हैड द हाईएस्ट शेयर्स ऑफ बोरोअर्स नॉट रीपेइंग उनके फेडरल लोन्स एंड अबाउट 42% ऑफ बोरोअर्स फ्रॉम फॉर प्रॉफिट स्कूल्स आरंट रीपेइंग देयर लोन्स. सो the highest rate of borrowers hamari kuch colleges mein are like from cosmetology schools or other trade schools that have shut down but student loans jo hote hain they come from federal government or private banks not the schools themselves. So even if they're like ki abhi college band ho gaya hai people must still repay their loans if the schools close down or if they don't graduate. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है अभी जिसके चलते बहुत सारे जो बच्चे हैं कॉलेज गोअर्स है दे आर इन डिफॉल्ट. दे आर लाइक कि अब हमारा कॉलेज बंद हो गया है हम जॉब भी नहीं कर पा रहे हमारे पास डिग्री भी नहीं है हम क्या करें. सो या दिस इज़ व्हाट द डेटा इज शोइंग एंड वी आर होपिंग ऑब्वियसली फॉर एक रेजोल्यूशन ऑन दिस. स्टे ट्यून्ड. मैं हूं आयुषी आपके साथ.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. जो इस प्रोड्यूस के सप्लायर हैं टेलर फार्म्स, उन्होंने ही खुद से आइसबर्ग लेटस रिकॉल कर लिया है, विच वॉज शिप टू 27 US स्टेट्स एंड इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल कंटामिनेशन विद साइक्लोस्पोरा द पैरासाइट, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 1500 से भी ज्यादा साइक्लोस्पोरासिस के केसेस हमें अलग अलग स्टेट्स में नजर आ रहे हैं. सो द कंपनी सेइंग दैट इट्स एक्टिवली रिमूविंग द प्रोडक्ट्स. दे हैव सस्पेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसबर्ग लेटस फ्रॉम सेंट्रल मेक्सिको टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे आर नो लॉन्गर रिसीविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इम्प्लीकेटेड लॉट. सो उनका ऐसे कहना है कि कंज्यूमर्स हु हैव परचेस्ड दिस रिकॉल्ड आइसबर्ग लेटस शुड डिस्कार्ड इट इमीडिएटली एंड नॉट कंज्यूम इट. सो अगर आपने खरीदा है between June 29th through July 16th in Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, हमारी स्टेट में Massachusetts, South Carolina, New Hampshire, अगर आपने खरीदा है तो प्लीज़ जस्ट कम्प्लीटली उसको डिस्कार्ड कर दीजिए. द रिकॉल नोटिस इंक्लूड्स ब्रांड अब्रीविएशंस एंड सम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एज वेल. तो उसमें यूज बाय डेट्स भी लिखे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए. एंड दे डू नॉट मेंशन स्पेसिफिक रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स और प्रोडक्ट नेम्स, बट अगर आपने आइसबर्ग लेटस पिछले कुछ दिनों में खरीदा है तो जस्ट डिस्कार्ड इट. कुछ दिन आइसबर्ग लेटस खाइए मत, जस्ट सेफ रहिए एंड खुद का ख्याल रखिए. थोड़े से भी सिम्टम्स नजर आते हैं डॉक्टर के पास जरूर जाइए. स्टे ट्यून्ड.

artists are left with lot of mixed emotions kal ke final ke chalte. Hello ji, welcome back. Aapne tune in kiya hai Naira Rally Drum. Paka Desi, Paka Local. Main hu Ayushi and mere saath aap filhal sun rahe hai Zara Muskurao. So yesterday Spain walked off with the World Cup trophy and obviously Argentina ki fans, Messi thode se aankhon mein aansu leke bahar nikle hai. So Spain is now back atop the soccer world for a second time, and it was after Ferran Torres' first goal of this year's World Cup, unquestionably obviously the goal of his life, and this goal basically gave his country a 1-0 ka win over now dethroned champion Argentina in the final. So yeah, the goal basically came with Argentina down to 10 men after Enzo Fernandez was sent off late in regulation following a reckless tackle. एंड उसके बाद थोड़े से जो ओवरऑल टेंशन थे वो मैच में थोड़े से बढ़ गए थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं. बट इन द एंड स्पेन डिनाइड मेसी अ सेकेंड स्ट्रेट टाइटल इन व्हाट ही हैज़ इंडिकेटेड वाज हिज फाइनल वर्ल्ड कप मैच. तो अर्जेंटीना के फैंस जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा दुखी है कि अरे मेसी का तो आखिरी वर्ल्ड कप था, लाइक एकदम पास पहुँच के भी हम ट्रॉफी घर नहीं ले आ पाए. सो ओवरऑल जो फुटबॉल के फैंस हैं, वर्ल्ड कप के जो फैंस हैं, दे वर लेफ्ट विद लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स यस्टरडे. ऑब्वियसली जो स्पेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो स्पेन के सपोर्टर्स हैं वो तो खुश है, जो अर्जेंटीना के सपोर्टर्स हैं वो थोड़े से दुखी है. बट या अब ये जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप का सिलसिला खत्म हो चुका है. कंग्रेचुलेशंस टू स्पेन फॉर देयर विक्ट्री एंड फॉर बींग द वर्ल्ड चैंपियंस नाउ. देखते हैं आगे वाले वर्ल्ड कप में क्या होता है. बट या दिस इज वॉट हैपेंड यस्टरडे. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But speaking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabre sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

0: क्या गाना था यार, एक नंबर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 40, 90 AM, 99.9 FM, LG3 4 Telugu, Naira, same. मैं हूँ आपकी अपनी मॉनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूल्स एंड टॉक।
1: वेल, हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री music characterized by the great musical stories, inspired harmonies, instrumental and arrangement. Top of the great set at the stage, Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पकड़ देसी।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD, 449 AM and 99.9 FM SD 34 Telugu Naira Fame. हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज. Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. पक्का देसी, पक्का लोकल.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangle Tunes and Talk. Well, Morris Ville, ready हो जाओ. आपका नया hangout spot आ रहा है. Introducing Ratcha Banda Food Truck, authentic Indian street food का असली स्वाद. अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, crispy डोसा, चपाती, चाट and flavor जो सीधा दिल तक जाए. ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में. ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस. दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम. नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून. राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायडा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 और 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु दायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डून सेंटर। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायडा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

ये माइंड ब्लोइंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD4 for 90 AM and 99.9 FM SD3 for Telugu Naira Same. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर. वेल माय ट्रायंगल में फोर्थ फ्राइडे इन टाइम सेलिब्रेट होने वाला है. जॉइन अस फॉर द TDA's फोर्थ फ्राइडे इन जुलाई एंड गेट रेडी टू डांस एंड टैगिंग ऑन द स्क्वायर. The fabulous Jewels will be performing live at the Plaza. Slip into the rhythm and Carolina Shags, the smooth, easygoing partner dance on right. Here in the South and Property match the beach music in good beat. Whether you are a seasoned dancer or just want to try, the square will be filled with the friendly faces, lively tune and plenty of fun. Come out, grab and partner and let the music move to you. Lal kahi jaiye ga nahi, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pata desi, pata local.

0: Hey, Dad, आप एंजॉय किया ऑन वाबी 1.9 FM, 99.9 FM, LG 4, 49 AM, 99.9 FM, LG 3, 4, तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूज एंड डॉग्स।
1: वेल, हमारे ट्रायंगल में आर्ट इन द पार्क सेलिब्रेट होने वाला है बहुत जल्दी। 70 जूईड आर्टिस्ट लाइन द स्ट्रीट नेक्स्ट टू द पार्क इन डाउनटाउन बॉल्विंग रॉक सेलिंग आर्ट ऑफ द ऑल फैशन वेदर इट्स ज्वेलरी फर्नीचर लॉन ऑर्नामेंट पॉटरी टेक्सटाइल पेंटिंग और फंक्शनल आर्ट यू आर लुकिंग फॉर आर्ट इन द पार्क हैज इट। All of the art in the show is hand-selected by committee of local experts as fine as art and handcraft. The annual art in the park is seasonal event held once in a month. The remaining art is park date held in August and in September up to October. Filhal ke liye jaiye gani sundariye Monica ke saath Radio Nayra Pakka Desi Pakka Local.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट 9 जेम्स ज्वेलरी वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी।

ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा सेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक्स। विल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लाई एट द ग्रासी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन विद मोर देन 60 वेंडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। This family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstone to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Braver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पता देसी पता लोकल।

GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Trying Tunes and Talk. Kaha na raha maine aapse ki entertainment ki koi kami nahi hogi. Dekha baaton baaton mein third hour mein pravesh kar gaya hai aur still hamari baatein continue rehne wali hai. ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो.

0: every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors. From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara. Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients. Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration? Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love. And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration. Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

is the Mount Dal Dali Kebab. One more time, welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM LG4 for 90 AM and 99.9 FM LG3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415 डॉट विक्स 4 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स 4 स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक्स रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स 4. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gani, sunte rahiye Monica ke saath.

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for 90 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4 for 90 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स ऑन टॉप पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: लेटेस्ट हिट्स।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आजकल ये तो करने होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपनी वाइफ्स को खुश करने के लिए. जस्ट रिमेंबर द डेट्स, ब्रिंग देम फ्लावर्स, डू समथिंग नाइस फॉर देम, इट ऑल इट टेक्स. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency Naira. And you know, time flies when it's true love. Nick Jonas marks 8 years since proposing to Priyanka Chopra, taking fans back to the moment it all began. बहुत प्यारा सा फोटो भी उन्होंने लगाया हुआ प्रियंका के साथ में इंस्टाग्राम में. इट्स सो स्वीट मैन, इट्स सो नाइस. लाइक 8 साल बाद भी आपको वही स्पार्क है आपके रिलेशनशिप में. यू आर स्टिल रिमेम्बरिंग दोज डेट्स, दोज मोमेंट्स. इट्स वेरी रेयर, लाइक पीपल बहुत कम करते हैं ऐसा. बट वेन समवन डज इट, trust me, the next person is very lucky. Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Vasudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhu Deva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: Desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3888.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
4: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270-DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 carat gold and 18 carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3838.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का।
1: जीना मरना पैसा पैसा पैसा, नींद चुराए मेरी पैसा पैसा पैसा, एक ही तो

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: Ali Badauria, Alexander Noel and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan-India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
0: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
0: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
0: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: Because that I did not, you got it.

0: हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज यानी 20 जुलाई 2026 के ये हमारे एकदम नए कड़क और फ्रेश शो में नया हफ्ता शुरू हो गया है बॉस। तो उम्मीद है आप सब आज सोमवार को पूरे जोश के साथ काम पर लग गए होंगे। आज के इस शो में हम पुरानी सारी खबरों को पीछे छोड़कर बात करेंगे अपने रैली धर्म और RTP एरिया की कुछ बिल्कुल ताजा और सनसनीखेज खबरों की। साथ ही में शो में बॉलीवुड का बिल्कुल नया और जबरदस्त तड़का भी लगाएंगे, आने वाले बड़े लाइव शोज की बातें करेंगे, और हाँ, आपका मूड जो है वो रिफ्रेश करने की जिम्मेदारी मैंने लेकर रखी है। तो डोंट वरी, 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। शो का नाम है निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। एंजॉय करते हैं इस प्यार भरी शाम का ये पहला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
1: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online, or book catering services.

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। शुरुआत करते हैं मौसम की सबसे बड़ी और ताजा खबर से। नेशनल वेदर सर्विस रैली ने आज सुबह सुबह सेंट्रल नॉर्थ कैरोलिना के कई हिस्सों के लिए फ्लैश फ्लड वार्निंग जारी की है। आज तड़के हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई निचले हिस्सों में सड़कों पर 2 से 3 इंच पानी जो है वो भर गया है, जिससे मंडे मॉर्निंग को काम पर निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए गाड़ी थोड़ी संभाल कर चलाइए, एक सेफ डिस्टेंस रखिए 2 गाड़ियों के बीच में और उन टॉक्सिक लोगों के साथ भी जिन्होंने आपकी लाइफ को टॉक्सिक बना दिया है। और मैं यही कह रहा था यार, ज्यादा टेंशन मत ले, थोड़ा पेशेंस रखे एंड स्पीड पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सुनाने जा रहा हूं आपको ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना? गाना काफ़ी बेहतरीन था और मैं ये कह रहा था कि अगर आप मंडे को बहुत लेजी फील कर रहे हैं तो ये मतलब आपके मन का वहम है, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं यार क्या इतना अच्छा वीकेंड था, मंडे आ गया, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका माइंड सेट है वो सिग्नल देता है आपको एंड आपको और भी आलसी बनाने में मदद करता है। ऐसा नहीं करना है, एनर्जेटिक रहना है, एनर्जेटिक होके काम करना है। अगर काम करना जान पे आ रहा है तो वो जान पे ही आएगा। अगर आप अच्छे मन से पॉजिटिविटी से लाइक जाते हैं काम करने के लिए तो आपको अच्छा ही लगने वाला है। तो जो भी चीज़ें हैं ना यार, मतलब इतना स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो पूरा माइंड सेट का गेम है। अगर आप ठान ले कि ऐसा है तो ऐसा ही है, है ना। वेल एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आपने एंजॉय किया ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माणा नाइट्स एंड डाउनटाउन रैली गेटवे प्रोजेक्ट का काम आज से तेज। जी हाँ, रैली के डाउनटाउन से एक बड़ी और शानदार कमर्शियल अपडेट आ रही है। डाउनटाउन के दक्षिणी छोर पर स्थित सिटी गेटवे डिस्ट्रिक्ट का कंस्ट्रक्शन काम आज सोमवार से भारी मशीनों के साथ और तेज कर दिया गया है। सड़कों के विस्तार और अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज बनाने के लिए, पेड़ों की कटाई और जमीन समतल करने के लिए जो काम है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में डाउनटाउन का पूरा लुक जो है वो बदलने वाला है। एंड काम की स्पीड जो है ना वो इस कदर बढ़ चुकी है कि ये काम जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर एंड सुनते रहिएगा निर्वाणा नाइट्स।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नैरा पंडरीपना नाइट्स एंड दरम काउंटी में 50 जगहों पर रोड वर्क और हाईवे क्लोजर। यस, अगर आप आज रात को गाड़ी लेकर बाहर निकलने वाले हैं तो ये खबर ध्यान से सुने। ट्रैफिक विभाग ने आज सोमवार के लिए एक नया स्केड्यूल जारी किया है, जिसके तहत प्रांतीय हाईवे पर रोडवर्क की वजह से आज रात 50 से ज्यादा जगहों पर हाईवे क्लोजर रहने वाला है। हाईवे 401, हाईवे 12, हाईवे 7 जैसी प्रमुख रूट्स प्रभावित रहेंगे, इसलिए घर से निकलने से पहले मैप जरूर देख ले और आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है वो कर ले, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं और आपकी ऑफिस की कोई ज़रूरी मीटिंग है तो जो मीटिंग है वो लेट हो सकती है ना। सो बी केयरफुल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।